0: SBS Gorkha Radio. Gorkha Radio.
1: PFB's Gorkha Radio कार्यक्रम में ले आमी चाहूँ यो समय अयले नमस्ते को सेकेंड आवर मास्टर था रब अपने ये तय दे कार्यक्रम को यो आर बरन बिता लेने समय आई सके को साथ जानकारी कराऊँ जान चु कार्यक्रम को अयले थर्ड आवर में बने तबले पावना सकनो ने सा आज को दिन में PFB's संवाद र अयले लाय बनी ज्यादा सादे मेलिना राय र विजय अधिकारी को आवाज में मेरी मुना र त्यस पश्चात कार्यक्रम को हमी थर्ड आवर में समझा पश्चात भेटने